0: ये देखो इत भाई गे हाँ गुमसिन कहाँ खबे ना खाईमा गई गुस्ती खाईमा सुना इसके खोपती डोमिंग ना सुना खाईमा सरंग माँ ऐसे खाईमा तीव्र दमियों के ना एनर्जी है देख रहा हूँ ना ये मार्ग देखा हम्म ओली के ना चीके ओली अमे पेट्रोल ना ची देख न कोई
1: आई
0: हूँ बिप्के ने हाँ ना ना ने बगम मा खराब खराब से न हो गिदा ने हाँ
1: हम्म
0: मधी देख रहा हूँ अब
1: वेरी गुड थैंक यू